0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और ठीक 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। भोर की इस मंगल बेला में आप सभी श्रोताओं का सहृदय स्वागत है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति

0: एलसी रोड्रिग्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना के अंतर्गत भक्ति गीत और संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मातृ वंदना समूह स्वर में, रचना मंजर भोपाली, संगीत राम किशन चंदेश्री।

अर्चना के अंतर्गत भक्ति गीत और संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी देंगे आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। अब से

कुछ ही देर के बाद 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सविता देवी के गायक स्वर में। 6:40 से सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 6:55 से संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। 7:00 से कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 से कृषि संकेत के अंतर्गत विषय पशुओं की गर्मी और बरसात में देखभाल पर जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश शाह। 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। 7:20 से कार्यक्रम मन चाहे गीत और 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8:00 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत। 8:45 से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुन सकेंगे। 10:00 से भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे। 10:05 से प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन आप सुनिएगा। 10:10 से फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। और 11:00 से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 2:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 2:15 से दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार आप सुन सकेंगे। शाम 5:00 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां और 5:02 से कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:00 से चित्रपट संगीत। 6:15 से संगीत सरिता। 6:30 से कार्यक्रम सदाबहार गीत। 6:45 से कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7:20 से कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे और 7:30 से भोपाल केंद्र से ग्राम सभा आप सुन सकेंगे। आज रात 8:00 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण, विषय मध्यम वर्ग कल्याण। 8:35 से सुनिएगा संगीत सरिता। रात 9:00 से कार्यक्रम मन चाहे गीत। रात 11:00 से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11:10 पर करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आज बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को दोपहर 12:00 से। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग का समय दोपहर 12:00 से। हमारा फोन नंबर है 240845 और सागर का STD कोड है 07582। सूचना

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर सविता देवी।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ होते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहा तो प्रभु का आपार चरित और कहा सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुरी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था सविता देवी का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लाहौर फिल्म से, जो कि साल 1949 में रिलीज हुई थी, करण दीवान की आवाज़ में गीत, अजीज कश्मीरी की शब्द रचना, संगीत श्याम सुंदर का।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म जादू से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूं ने इस गीत को लिखा था, संगीत नौशाद का था। कार्यक्रम में आप सुनिए चांदनी रात फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में गीत, शकील बदायूं की शब्द रचना, संगीत नौशाद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोगन फिल्म से गीता दत्त की आवाज में गीत। केदार शर्मा ने इस गीत को लिखा है और संगीत है बुलो सी रानी का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं आज बुधवार 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से। कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने की रिकॉर्डिंग का समय है आज बुधवार दोपहर 12 बजे से। हमारा फोन नंबर है 240845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रशासनेन सीबीएसई इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एकसदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्षपदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे 12 कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्रामपञ्चायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीय ऋतु विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामि दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
0: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीतेंगे। ये पंक्ति सिर्फ संघर्ष की बात नहीं करती, ये उस तरीके की बात करती है जिससे दुनिया अक्सर नई बातों और नए विचारों के साथ पेश आती है। जब कोई व्यक्ति कोई अलग रास्ता चुनता है, कोई नया विचार लेकर आता है या किसी काम को

पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। दुनिया का स्वभाव है कि वो परिचित चीजों के साथ थोड़ा ज्यादा सहज रहती है। जो नया होता

0: लोग प्रश्न उठाते हैं, मजाक बनाते हैं, उसकी नियत पर संदेह करते हैं, और अगर उसके काम में सचमुच कुछ दम है, अगर वो वास्तव में प्रभाव पैदा करने लगता है, तब विरोध भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हर परिवर्तन केवल समर्थन नहीं लाता, वो असहजता भी लाता है। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं श्रोताओं। उन्हें लगता है कि विरोध इस बात का प्रमाण है कि शायद वो गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि कई बार सच्चाई ठीक इसके विपरीत होती है। कई बार विरोध इस बात का संकेत होता है कि आपके प्रयासों ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। दूसरों की प्रतिक्रिया हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक कहानियां गढ़ता है, अनावश्यक आलोचना करता है, या आपके काम से अधिक आपकी छवि पर चर्चा करता है, तो वो उसका विषय है, आपका नहीं। किसी भी सार्थक काम की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गुणवत्ता होती है। अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है, आपका काम ईमानदार है और आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर है, तो धीरे धीरे बाकी शोर अप्रासंगिक होने लगता है, क्योंकि अंत में लोगों को शब्द नहीं परिणाम दिखाई देते हैं। श्रोताओं, जीवन में ऊर्जा सीमित होती है, और अगर उसका बड़ा हिस्सा हम हर आलोचना का उत्तर देने में, हर गलतफहमी को सुधारने और हर नकारात्मक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने में खर्च कर देंगे, तो अपने वास्तविक काम के लिए तो वो ऊर्जा बहुत कम बच पाएगी। शायद इसलिए परिपक्वता का एक रूप ये भी है कि हम ये पहचान सकें कि कौन सी लड़ाई हमारी है और कौन सी नहीं। हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, हर धारणा को बदलना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर अपना काम करते रहना होता है, क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हो, तब समय अक्सर वो साबित कर देता है जिसे शब्दों में साबित करने की कोशिश की जा रही थी, और शायद तभी उस पंक्ति का अंतिम हिस्सा सच होता है। पहले अनदेखी होती है, फिर उपहास होता है, फिर विरोध होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान शोर पर नहीं अपने उद्देश्य पर बना रहे, तो एक दिन संघर्ष की जगह परिणाम बोलते हैं, और तब जीत केवल इसलिए नहीं मिलती श्रोताओं की लोग मान गए, जीत इसलिए मिलती है क्योंकि आपने रास्ते में अपना समय उन बातों पर व्यर्थ नहीं किया जो आपके लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं थी। शायद इसीलिए कभी कभी सबसे जरूरी काम जवाब देना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना होता है। विचार करिएगा श्रोताओं। इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं आज बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से। जी, फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग का समय है आज दोपहर 12 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2408 45 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि संकेत। विषय है पशुओं की गर्मी और बरसात में देखभाल। विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश शाह।
1: अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और इसमें होता यह है कि मनुष्य तो अपना प्रबंधन कर लेते हैं गर्मी से बचने का, लेकिन पशुओं को बड़ी कठिनाई होती है गर्मी से बचाव में। तो अभी तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इतनी गर्मी में पशुओं को खुला ना छोड़ें, चरने के लिए बाहर ना भेजें, उनको बांध कर खिलाएं, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, कम से कम दिन में 2 से 3 बार उनको पानी पिलाना है, और इतनी धूप में तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है चरने के लिए कि वो उसको चराई तो नहीं मिलेगी लेकिन वो

0: पशु बीमार होके आ जाएगा। छायादार स्थान पर रखें, ऐसे स्थान पर रखें जहाँ हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ठीक है। अगर पानी की समुचित तो आपके पास उपलब्धता है तो पशुओं को नहलाएं शाम के समय या सुबह के समय, ताकि उनका तापमान नियंत्रित रहा आएगा। और अगर कहीं आसपास तालाब वगैरह है तो उसकी सहायता से पशुओं को, खासकर भैंस वगैरह तालाब में जाती हैं, तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो उनको ठंडे समय में वहाँ तालाब आदि में भी छोड़ सकते हैं, ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और उनकी उत्पादकता बनी रहेगी। तो ये बात तो हो गई गर्मी की। और गर्मी के बाद जो बारिश का सीजन आता है तो हमें विशेष ध्यान रखना रहता है कि कुछ बीमारियां हैं जैसे कि गलघोटू जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, देशी भाषा में गलघोटू बोलते हैं। तो इस बीमारी का जो उद्भेद होता है वो बारिश के समय होने की संभावना रहती है। एक और दूसरी बीमारी है जिसको हम चुरका बोलते हैं या एक टंगिया बोलते हैं, इसकी भी बीमारी होने की संभावना बारिश में अधिक होती है। तो बारिश के पूर्व मतलब 15 जून के आसपास या थोड़ा बहुत और पहले दोनों बीमारियों का टीकाकरण आप अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि ये दोनों जानलेवा बीमारी हैं। और अगर इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण हम करवा लेते हैं बारिश के पूर्व तो इन बीमारियों से बचाव हो सकता है। साथ में एक लंपी बीमारी का टीका भी आता है, और अगर उसकी उपलब्धता हो जाती है तो बारिश के पूर्व लंपी बीमारी का भी टीकाकरण करा लें, ताकि उससे उस बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी बारिश के पूर्व। और एक बात का ध्यान रखें कि बारिश के समय विभिन्न प्रकार के कृमि होने की संभावना होती है, तो थोड़ा सा बारिश जब प्रारंभ हो जाए तो उस समय पशुओं में कृमिनाशक दवाइयां हमको अवश्य देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कृमिनाशक दवाइयां आती हैं, तो पशु चिकित्सक के परामर्श से आप दवाइयां पशुओं को कृमिनाशक दवाइयां देंगे ताकि उनमें कृमि नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे प्रदेश में जो गाय या भैंस हैं वो अधिकांश अवर्णित नस्ल की हैं। तो अवर्णित नस्ल के पशुओं का क्या नुकसान होता है कि इनकी जो उत्पादन क्षमता रहती है वो बहुत ही कम रहती है, कि आधा लीटर दे रहे हैं, एक लीटर दे रहे हैं। और साथ में जो अवर्णित नस्ल के पशु जो हैं इनमें दो ब्यात का बीच का अंतर भी बहुत ज़्यादा होता है। सामान्य तौर पर अगर अच्छी नस्ल का पशु रहेगा तो वो एक साल या सवा साल में एक बछड़ा या बछिया देती है, लेकिन अवर्णित नस्ल के पशु को दो दो साल लग जाते हैं अगली ब्यात में। तो इस वजह से हमारे पशुपालकों को लाभ नहीं मिल पाता है, और उनकी मेहनत पूरी होती है, उनका देख रेख पूरी होती है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम उन्नत नस्ल के पशुओं को पालते हैं तो उससे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और जल्दी जल्दी हम उनसे बछड़ा या बछिया ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, विषय था पशुओं की गर्मी और बरसात में देखभाल। विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश शाह थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार।

0: जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहने अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण

0: पूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवम्बर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्वसहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडोरी में जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं और फरमाइशकर्ताओं के नाम भी आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। सिल्लोड से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, अनिल प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। महाराष्ट्र से बंडू, चंद्रकला और देवीदास। मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी। बालोद से डोमेंद्र नेताम

गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम परदेस।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता रखवाला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता, आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट द्वारा फरमाइश भेजी थी। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद और सानवी। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल लाड़ो, नानक चंद। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती, पडरिया छत्तीसगढ़ से। भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता दतरेंगी से। सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन और कौशल और दीप्ति। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार राजेश रोशन है। फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। आप सभी की फरमाइशें हमें प्राप्त हुई हैं व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के माध्यम से। पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक। सागर से कुंदन लाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज, मानस। उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और गुड़िया वेदा सिंह। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए फिल्म जान से मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत आनंद मिलिंद का है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए सईद राही की शब्द रचना। गायक कलाकार और संगीतकार महेंद्र कपूर। एल्बम का नाम है दिल की आवाज।

0: चाहिए वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना दिलराज कौर की आवाज़ में ये गैर फिल्मी गीत। मोहसिन नकवी ने इस गीत को लिखा था, संगीत गुलाम अली का था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम मेरे दिल में तू ही तू है से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गीत। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा है, संगीत जगजीत सिंह का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं आज बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग का समय है आज दोपहर 12 बजे से। हमारा फोन नंबर है 240845। सागर का STD कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच

0: साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार प्रभात, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत। लोकगीत कलाकार हैं देवी प्रसाद रैकवार।
1: माता बनन ने पाई देहात।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं आज बुधवार दिनांक 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग का समय है आज दोपहर 12 बजे से। हमारा फोन नंबर है 2408 45 2408 45। सागर का एसटीडी कोड है 07582। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अब सुनिए देवी गीत हल्लनबाई और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन। लोकगीत कलाकार है मुन्नी लाल बरमैया और साथी

0: हेलो माँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 8:45 होने को है। बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीत संगीत।

दिल क्या करे। इस फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का था। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है क्या कहना। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है। संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। निखिल विनय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है कुछ दिल ने कहा।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत ये गीत अभी आप सुन रहे हैं और अब से कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे मुंबई केंद्र से। तब तक आप आनंद लें इस गीत का।

स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: चाहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और ए आर रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफ़ी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।

फिल्म खामोशिया का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया।

0: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
1: और मैंने पूनम से शादी की, आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं, मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है, उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
2: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार है सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपनी कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया है।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पर शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब

1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गाँवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559

मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: श्रोताओं, अभिनंदन है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावर जी। आप तो जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन्हीं सभी बीमारियों पर चर्चा करते हैं। सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर। आज नौ तपा खत्म हो गए। अब ऐसा माना जाता है कि नौ तपे खत्म होने के बाद गर्मी में कमी आ जाती है, पर उमस, पसीना, घबराहट, ये सारी समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
1: देखिए, जो सलाह रहेगी, जो एक सामान्य हेल्दी इंसान के लिए भी जो सलाह है, वो सारी सलाह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लागू होती है। कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, परिश्रम उतना ही करें जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है, नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें, 6-8 घंटे की नींद लें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो आप ओआरएस का घोल लेंगे, उसमें भी शुगर रहेगा,
0: सच बात,
1: तो वहां भी परेशानी आएगी। बहुत सारे लोग डर के मारे ओआरएस नहीं पियेंगे, पर जिनको जरूरत है तब आप नींबू की शिकंजी में नमक वाली शिकंजी भी बना सकते।
0: सर, ये जो गर्मी का मौसम होता है, इस गर्मी में रात में सो नहीं पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बिजली का अभाव रहता है तो लाइट नहीं है तो नींद नहीं हो रही है, मच्छर भी परेशान कर रहे हैं, जब नींद पूरी नहीं होती है और सुबह पता चला डाइजेशन भी सही नहीं है और खाना खाने की इच्छा नहीं है, ऐसे में जो डायबिटीज से पेशेंट लोग होते हैं बड़े व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाई करें तो क्या करें?
1: नींद का बड़ा महत्व है। अगर 6-8 घंटे की नींद नहीं होती तो मानकर चलें कितनी भी दवा चल रही हो
0: जी,
1: आपका शुगर पैमानों के बाहर निकलेगा, दायरे के बाहर निकलेगा, आपको हाई शुगर्स मिलेंगे। तो सुनिश्चित करें कि दिन में किसी भी समय अपन 2-3 घंटा 4 घंटा सो लें। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आहार का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, दवा नियमित तौर पे लीजिए। टेंशन तनाव इसके ऊपर अगर हो जाए तो फिर तो बीमारी और आगे बढ़ने लग जाएगी।
0: सच बात।
1: पेशाब के रास्ते जलन है, खुजली है, उमस के दौरान ऐसा हो सकता है तो अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये समस्या, ये इन्फेक्शन बढ़ने से भी शुगर बिगड़ेगा।
0: सर, ये लू लग जाती है, अक्सर जब लू लगती है तो यही होता है कि व्यक्ति को जो घरेलू उपचार है वो किए जाते हैं, और ऐसे में डायबिटीज से जुड़े व्यक्ति को खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर घरेलू उपचार में चलते गए तो संभावना बिगड़ सकती है। सबसे पहले अगर लू लगी है तो क्या सावधानी बरतें?
1: देखिए, क्या होता है कि अगर किसी मेडिकल दृष्टिकोण से बोलें तो लू जैसी कोई बीमारी किसी दायरे में आती नहीं।
0: अच्छा।
1: पर हाँ, हीट स्ट्रोक बोल सकते हैं।

0: आप, तो उस समय आपको पानी का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, आपको ऐसे जो मौसमी शीतल फल है उनका सेवन करना चाहिए। मान लीजिए आपको उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो आपके निकट के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ध्यान रखेंगे। और जिनको टाइप 1 है उनको तो खासतौर पर ध्यान रखना है कि इंसुलिन का डोज नहीं मिस होना चाहिए। ऐसी अवस्था में इंसुलिन बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा।
1: सर, हमारे किसान भाई आजकल जैसे खेतों पर काम करना शुरू कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अब गांव में भी डायबिटीज अपने पांव पसार चुकी है, फैटी लीवर मिलना, डायबिटिक होना, हार्ट पेशेंट होना गांव में भी अब आम समस्या हो गई है। खेती किसानी से जुड़े लोग हैं और निकलना घर से बहुत जरूरी है, काम भी हो रहा है, मेहनत भी हो रही है, और डायबिटीज को कंट्रोल करना उनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, ऐसा हो क्यों रहा है?
0: देखिए, डायबिटीज होने का कारण तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि गांव देहात में उतना परिश्रम रहा नहीं, उतना शुद्ध भोजन रहा नहीं, कहीं ना कहीं कीटनाशक और ये सब चीजें अगर आप बोले, कोई ऐसा शोध हुआ नहीं है। तो जो शहरी जीवन शैली गाँवों में आ गई तो बीमारी तो शहरी आएगी
1: जी।
0: दूसरा कि आपको अब ये बीमारी हो गई है, आप खेतों में काम करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप अपने आप को जैसे आप सामान्य तौर पर ढक कर जाते हैं वैसा जाइए, पानी का ध्यान रखें, दवा का बराबर सेवन करें। ऐसा ना हो कि खेतों पे चले गए, सुबह दवा खा ली, लंच ही रह गया, तो शुगर लो हो जाएगा, तो वहां जरूर बेहोशी हो जाएगी आपको। तो इन परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
1: मित्रों, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी आते हैं, और मैं सर से पूछ लेता हूं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। आपके मन में भी सवाल हैं तो आप हमें भेजिए ना, हम आपके सवालों का स्वागत कर रहे हैं। हमारा नंबर है 8887811 2343। नंबर फिर से सुन लीजिए, 8887811 2343। अब मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चेतावर का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं।
1: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम दरोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र भाई, गर्मी का मौसम तो अपने शबाब पर चल रहा है।
1: बिल्कुल सर जी, गर्मी का मौसम तो इस वक्त बहुत कवाब से चल रहा है सर जी, और उसमें खासकर क्या है सर जी, अपनी देखभाल सभी श्रोताओं से निवेदन है मेरा।
0: हाँ हाँ।
1: कि जो कि ज्यादा ही काम हो तो ही घर से निकले ना, तो अथवा घर पर रहे, और ज्यादा जरूरी काम हो तो देखो एक बोतल पानी का लेकर जाए,
0: हाँ,
1: प्याज की गठिया जेब में डाल के जाए, और तौलिया मुंह से बांध के जाए, सर पे बांध के जाए, और बिल्कुल फुल बिल्कुल फॉर्म में ऐसा जाए कि कहीं हवा ना लगे तो ठीक है, ना तो कोई ज्यादा जरूरत है तो घर से निकले, ना तो अथवा घर पर रहे।
0: खास बात यह है कि ऐसे में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है आग से, तो
1: बिल्कुल पहुंचता है।
0: कभी भी जलती हुई तीली, जलते हुए अंगारे, कभी भी हमें आग को लेकर लापरवाह नहीं होना है। अपने गांव में, खेतों में, जंगल में, शहरों में, सभी जगह हम आग से बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल रहेगा सर जी, कि मेरा तो ये भी निवेदन है सभी श्रोताओं से कि जो नरवी होती है उसकी गेहूं की, तो उसको मत जलाएं, उसको जोतकर उसको बखर दें तो अच्छी बात है, तो अपने आप खत बन जाएगा उसका।
0: बिल्कुल सही बता दें। लोकेंद्र भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: सर जी फिल्म का नाम है दिल, उसका ये गीत है हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले।
0: तो आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: फिटनेस स्कीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
2: जी सर नमस्कार, सर जैसिकल की बात कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, और आप अपना नाम भी बता दें।
2: सर मेरा नाम रवि है।
1: हाँ हाँ,
2: मैं जिला सागर मकरोनी राजाकरी से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो रघुवीर भाई क्या करते हैं आप?
2: सर मैं दिव्यांग हूँ, तो सर पढ़ाई करता हूँ। सर मैं इस बार मेरी ये प्रथम वर्ष सर एग्जाम हो गए हैं।
1: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, यानी किसी के भरोसे नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं आप।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो विषय कौन कौन से है जान सकते हैं आपके क्या?
2: सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये और भी विषय सर।
1: बहुत ही बढ़िया
2: सर, आंखों से सब दृष्टि वाले।
1: चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी मन की आंखों को इतना तेज रखते हैं कि आपने यहाँ तक पढ़ाई करते करते पहुँच गए आप।
2: जी,
1: और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुँचेंगे और अपने हौसलों को परास्त ना होने दें।
2: जी सर, बस आपकी यही दुआएं हैं सर, आपकी दुआ से।
1: बस जरूरत है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
2: जी जी, पर्यावरण को भी।
1: खासतौर से गर्मी के मौसम में कोशिश करें हम कि आग लगने से पर्यावरण को क्षति होने से हम बचाएं। गांव में, शहरों में, कहीं भी आग ना लगने दें, क्योंकि एक आग लगती है उसके बाद बहुत सारे आगे जंगल भी जल जाता है, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बर्बाद कर देती है।
2: जी सर बिल्कुल, मेरा सर सभी श्रोताओं से यही कहना है कि काफी से जैसे ज्यादातर वृक्षारोपण करें और पक्षियों के लिए मौसम में गर्मी का मौसम में पानी वगैरह।
1: सही कह रहे हैं,
2: ताकि उनके लिए कोई परेशानी का सामना न। अत्यधिक वनों की कटाई के कारण जो भी है टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें भी ज्यादा गर्मी और सारे कई कारण
1: सही का
2: सामने आ गया।
1: रघुवीर भाई बताएं गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
2: सर मेरे को गाना सुनना है जो भी है हक तेरा, तेरे हवाई कर दिया।
1: तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार जय शेखर जी, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे बात करने की। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
3: हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमसे बातचीत करते हैं, अपने दिलों की बात हम तक पहुंचाते हैं। अपना परिचय दें, आप कौन बोल रहे हैं?
4: जी मैं गोपालगंज से डॉक्टर अनुपमा राजपूत बोल रही
3: हूं। अनुपमा जी, हमें बताएं क्या करती हैं आप?
4: तो हाउस वाइफ हूँ
3: जी। जी
4: लेकिन अपने शौक पूरे करती हूँ। घूमने का शौक है, चित्र बनाने का बहुत शौक है, तो फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा है। मतलब इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है।
3: बहुत ही अच्छी बात है। निकट भविष्य में कहाँ घूम कर आई हैं आप?
4: अभी हम लोग पिछले महीने ही ऋषिकेश गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। एक आंतरिक शांति मिलती है ऐसी जगह जाके।
3: बिल्कुल, ऋषिकेश और हरिद्वार की तो बात ही अलग है।
4: बिल्कुल, गंगा किनारे आप बैठिए, ऐसा लगता है पूरा जो भी टेंशन होते हैं सब निकल गए अपने शरीर।
3: और अनुपमा जी, वहाँ की प्रकृति भी बड़ी खूबसूरत होती है, पहाड़ दिखते रहते हैं, नदी में जो पानी आता है बह के, पहाड़ों से बर्फीली चट्टानों से बह के, बहुत ही सुंदर एहसास होता है वो
4: पूरा। मतलब कहीं नहीं घूमे हम लोग, सिर्फ ऋषिकेश रुके और उससे वहाँ का मजा लिया, क्योंकि आप भागते दौड़ते रहो, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, तो उसको मजा नहीं आता।
3: अच्छा अनुपमा जी, हमें ये बताएं, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए?
4: पर्यावरण के लिए सबसे पहले तो पेड़ लगाना।
3: हाँ।
4: और इस बार हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में, मतलब अभी से 5-6-8 गड्ढे करके रखे हुए हैं, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी रक्षा करके उसको बड़ा करना सबसे जरूरी काम।
3: बहुत ही अच्छी सोच है अनुपमा जी आपकी, और इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि आप अपनी फरमाइश का वो प्यार

0: सा गाना बताएं जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मुकेश जी की आवाज में है तीसरी कसम फिल्म का, दुनिया बनाने वाली, बहुत पसंद है, मतलब कई बार देख चुके हैं वो फिल्म, लेकिन मन नहीं भरता उस फिल्म से।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगा अनुपमा जी आपसे बातचीत करके, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर तीसरी कसम, इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: जी स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
0: हाँ नमस्कार सर,
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
1: राजू भाई बताएं क्या करते हैं आप झालावाड़ में?
0: गांव में रहते हैं हम, मेरा गांव है भिलवाड़ा, भिलवाड़ी।
1: तो काम धाम क्या करते हैं वहां पे आप?
0: खेती बाड़ी करते हैं,
1: तो फिलहाल खेतों में क्या लगाते हैं आप?
0: सोयाबीन लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं।
1: अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ?
0: अभी तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब खेत की हकाई जुताई कर रहे हैं।
1: और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बताना चाहेंगे आप?
0: पर्यावरण के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे।
1: और देखिए अब कुछ महीनों बाद जब बरसात की रिमझिम रिमझिम फुहारे पड़ेंगी, उस वक्त अगर हम कोई छोटा सा पौधा लगा देते हैं और उसकी हम पूरी साल भर देखभाल करते हैं, तो निश्चित रूप से
0: हाँ
1: पर्यावरण के लिए ये हमारा एक अनूठा और अच्छा कदम होगा।
0: बढ़िया, अच्छा कदम।
1: आपने खूब लगाए हैं पौधे कि नहीं?
0: लगा रखे हैं ना।
1: कौन कौन से पौधे लगे आपके यहाँ?
0: सीताफल के हैं
1: हाँ हाँ
0: और नीम के हैं और आम के, सभी लगाने पर।
1: बहुत ही अच्छी बात है। राजू भाई बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: आप सुना नमक हलाल का, जवानी जाने मन हसीने दिल रुबा।
1: आइए राजू भाई सुनते हैं आपकी फरमाइश पर नमक हलाल फिल्म का ये गीत। जवान

0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, फोन करेंगे सुनने में स्वागत है आपका।
0: जी, 3 महीना पूरा होगा सर।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है चार्ली भाई, आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताएं चार्ली, क्या चल रहा है इन दिनों आपका?
0: अब इन दिनों तो सर बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, मगर वो कहा के अपना तो यात्रा के विचार कर लिए थे, यहाँ से वो जा नहीं पड़ा थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: अपन आज शाम को निकल रहे हैं ग्वारी घाट जबलपुर।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, जो के गंगा दशहरा है जो, तो गंगा दशहरा से अपन एक रात रुकेंगे।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: चार्ली भाई, एक काम कर सकते हो आप, एक व्यक्ति को हमने देखा था कि वो नीम के कुछ पौधों के बीज बना के रखते हैं और कई प्रकार के पौधों के वैसे अपने थैला में रख के चलते थे और साइकिल पर चलते हैं, और वो रास्ते में चलते चलते साइकिल से पूरे में फेंकते जाते हैं जहां जहां उनका मन होता है। तो देखिए कितना अच्छा है, आप भी बहुत पैदल चलते हैं, बहुत यात्रा पे जाते हैं, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं कि जहाँ भी जाएं पौधे लगा कर आएं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: तो अभी आपने अपने गांव में क्या लगाया हुआ है?
0: गांव में लगे हैं सर, अपन तो जो अखाड़ को महीना लगाते दवाई कर सकते हैं,
1: हाँ,
0: नहीं है अभी।
1: हाँ
0: जी सर, का पर्यावरण बचाव अपने हाथ ही में है।
1: हाँ,
0: वृक्ष लगाए हैं, पानी का उपयोग ना करें, कम से कम करें।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं, जानो बने से बिल्कुल ही नहीं करो पानी को तो उपयोग।
1: सही कह रहे हैं आप।
0: हाँ।
1: तो चार्ली भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: मुस्कान फिल्म का सर।
1: मुस्कान का कौन सा?
0: जी

0: हेलो।
1: स्वागत है आपका फोन करें की सुने में।
0: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: सर मैं सूरज बात कर रहा हूँ।
1: सूरज कहाँ से बोल रहे हैं आप, पूरब से के पश्चिम से?
0: तहसील बादरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी।
1: तो सूरज भाई बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं बादरपुर में?
0: सर हम खेती बाड़ी करते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: तो खेतों में अभी क्या चल रहा है आपके?
0: अभी धान की तैयारी हो रही है सर।
1: अच्छा सूरज भाई, एक निवेदन है आपसे कि आप अपने आसपास के जितने भी किसान हैं, अपने गांव के, गांव से लगे हुए, उनसे बस एक ही निवेदन करें, एक ही अनुरोध करें कि एक छोटी सी चिंगारी कितने खेतों को, कितने फसलों को और कितने जंगलों को नष्ट कर देती है।
0: सर ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कानून भी बना है इस पर तो, के नरवाई जलाएंगे तो
1: हाँ,
0: उसे दंड का प्रावधान भी है।
1: और हम तो ये करें, लेकिन हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि ये देश, ये दुनिया आपकी भी है, हमारी भी है। कई साल लगाकर अपने आप को बड़ा करते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ऑक्सीजन देने के लिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
1: तो प्रयास करें कि ये काम आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को समझा सके।
1: हाँ,
0: बाकी हम तो नियम का पालन करेंगे ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूछते हैं आपसे आपकी फरमाइश।
0: सर आज दिव्य शक्ति का एक गाना है, आपको देखकर हमको ऐसा लगा, कुमार सानू का, यानी की आवाज में गाना।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका।
0: सर, हम कैलाश जूना से बोल रहे सर।
1: कैलाश भाई, क्या करते हैं जूना में आप?
0: सर, अभी तो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं सर।
1: अच्छा, और इसके अलावा पर्यावरण के लिए कुछ विचार हैं आपके कि पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रखें और क्या करते हैं पर्यावरण के लिए?
0: सर, पर्यावरण के लिए सर ये पेड़ पौधे लगाएं।
1: हाँ हाँ
0: जी सर, इनकी देखभाल करें पेड़ों की।
1: और कभी भी खासतौर से गर्मी के मौसम में हमें छोटी सी भी चिंगारी आग की लापरवाही के साथ यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है।
0: जी सर,
1: क्योंकि खेतों में पड़ी एक चिंगारी, जंगल में पड़ी एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, और कितने आदमियों को लगना पड़ता है उस आग को बुझाने के लिए, और कितने पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं।
0: जी सर, आग से तो बचाना चाहिए सर।
1: तो कोशिश करें कि कभी भी हम अपने पर्यावरण को अनजाने तौर पर भी नुकसान करने से बचें।
0: जी सर, बचाएंगे सर पर्यावरण को।
1: आप अपने आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को, सबको जागरूक करें कि भाई हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तभी हमारा देश और हमारी ये दुनिया सुरक्षित रह पाएगी।
0: जी सर।
1: तो बता दें कैलाश भाई, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
0: सर, विवाह फिल्म को कोई सा भी गीत सुना दो।
1: सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म विवाह का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनोद यादव, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे थे फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है, बस कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे और आप सुन सकेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी,

0: समय मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है यहाँ तापमान बहुत कम होता है
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी वो घटना थी जब

0: गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी।
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ, ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।

0: वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
1: ये रीछ तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ सांस रोक के, डर है तो कभी जान बच पाएगी।
0: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
1: बच गए, लगता है रीछ चला गया।
0: रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीछ तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
0: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
0: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।

0: कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपकू आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन की जानकारी दी गई है।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगी।
5: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
8: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
10: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
10: कौन लोग आ रहे हैं?
4: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
10: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
10: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
10: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
11: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
10: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
12: बिल्कुल,
10: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
11: हाँ, हाँ,
10: सब तैयार हैं,
11: तैयार हैं,
10: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे,
12: नहीं कटने देंगे,
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
10: ये है जंगल के उपकार,
11: मिट्टी पानी और बयान,
10: मिट्टी पानी और बयान।
2: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
13: अरे
14: क्या कर रहे हो?
13: मुंह के ताक रहे हो?
14: अरे शुरू
13: मारो
14: पे।
12: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चल जाएंगे पेड़ से।
10: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
13: सुनो, आगे बढ़ो।
12: अरे कहां से आए?
13: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
12: आगे बढ़ो। पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
10: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने।

0: देंगे आज
1: नहीं लगाने देंगे
0: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से
2: हाँ हम चिपक जाएंगे
3: ठीक है तो वहां चलो उन पेड़ों में जाओ चलो
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए
3: ठीक है तो वहां चलो अरे उन पेड़ों में जाओ चलो
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था
6: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो ध्वनियांकन विकास सांगवान कलाकार बाबला कोचर पूनम एस कुदेसिया ममता मलकानी प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो निर्माण सहायक कुसुम लता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी प्रिय श्रोता यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने को है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। यह है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज़ में है।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में, सूरज सनीम के बोलो, ललित सेन के संगीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज़ और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो की है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव वर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव वर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव वर्मन ने।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम।

यादों की महफिल, यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देव बर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नज़रों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज़ पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमय इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नज़र से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमय इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आँखों की खामोश भाषा और प्यार की नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों की

गा हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिख कर देखो क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मज़ा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इज़राहे मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए, तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना बड़ा बड़ा ख़तरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज़ किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। अभी इज़राहे मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफ़ी की भी आवाज़ भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नज़र आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज़ झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुज़ुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज़ अनमोल रत्न रफ़ी साहब की है, बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दें ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे ज़माने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं देखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिजारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय के बाद इतने, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही हैं तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी हैं तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी, और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ये अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूँगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत आपके करम कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है, तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि हे साइकिल, आप

इनायत आपके करम कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते करम। खतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज़ रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नज़ाकत इनायत और तड़प का जिक्र है, जहाँ दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। ख़तों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहाँ दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफ़र का आनंद का इंतज़ार है, तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है, जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

0: ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये ज़माना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नज़र उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी पेज पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नज़र आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से बातें होती नहीं थी, मात्र एकमात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है, जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फ़ोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रहे, ये प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की को दो छोटे भाई के ज़रिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है। हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर, दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है। हमारे श्रोता लिखता है, किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए,
1: ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुँचते हैं या अनकही बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज़्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज़ पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हर लफ्ज़ के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको। जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्ज़ाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर

मुझे कुछ होने लगता कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर ख़त तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुँचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक ज़माने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा। प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारी श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज़ पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियाँ बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊँ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियाँ डालकर जाता है। हमने पढ़ा सब, जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था। फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में। लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का ज़माना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए। तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत। ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गागा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी क्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज़ में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना ज़रूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है, प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया, तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाज़ों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो नहीं, रेडियो सेवा नहीं, बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज़ मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज़ में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ, कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया, फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर, और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नज़र, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ, कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या? उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़

हम सुन रहे थे कश्मीर की गली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज़ और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फ़न के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी, बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है, आपने भी लिखे, हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की गली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल शारों इशारों में, रफ़ी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फ़ोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फ़ोन नीचे रख के कॉल चल रही है, मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फ़ोन कट जाता था। जी, कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए, अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है, और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ।

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्क जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का सरबत किया फिल्म।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि अभी भी कई जनजातीय वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

0: प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकास खंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने आपको समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर

0: ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.air.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में

0: प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है श्री 420 फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही न...

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीत गीत आदित्य की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए, और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
1: है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या की बनाए क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो

0: ला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल। मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मंदाकिनी जी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी।
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं

0: वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता हैं, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल,
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त अंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वे कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहाँ एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई
0: या बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता है, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना, जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: है। तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है जी कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर,
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। हाँ। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर, और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है, बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर,

0: कमल फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
1: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सजती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी हैं ना, वो भी गठजोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
0: हैं, साइड में रख लेते हैं वो भी। हाँ।
1: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है, और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
0: हाँ, हालांकि गठजोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें गठजोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
1: गठजोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
0: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो गठजोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है, और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है गठजोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और गठजोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़ कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
0: होता है। बिल्कुल, और गठजोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी
1: चाहिए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्याश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है। और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता की दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना।

0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: भैया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द हैं इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल, हम

0: कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खासतौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
1: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
0: खिला दी जाए किसी भी तरह,
1: ताकि उनका पोषण मिले।
0: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
1: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
0: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है, साथ ही मसाले जो भुने हुए मसाले हैं उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जंजल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात बात कर रहे हैं पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाख भी यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है

0: इसे लगाना है। अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि

0: उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न. ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं. बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है. तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो. यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है. उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है. तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से. इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं. क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं. स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें. टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है.
1: रिश्तेदारों
0: को और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है. अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है. तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है. ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी है. उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा. वो खुद भी hearing impairment है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं. सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है. ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी. ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं. बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मैनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड. तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है।

0: अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें हैं, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू ऐड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफ़ी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं,

0: क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी, तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज और कंसर्न नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.

0: इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सब के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स. ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच. ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थल के पास जाती हूँ, ऑप्थल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड basically depends upon the context. तो hence the conceptual clarity plays a very important role. अगर

0: संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है। जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: सी, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग, राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा। ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज। ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं, नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल, यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल
1: ए दिल है मुश्किल जीना, ये जी सुनते हैं ये गाना।
2: ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स वॉट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्टुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस, पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है. उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
0: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
1: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
0: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं.
1: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज्ड टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा. मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
0: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
1: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर

0: मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1: जी संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन से हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिगो थिंग भी बनाया है. वर्टिगो एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफ़ी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी थी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 जून से सी फूड निर्यात पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राज्यपाल आज हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी। योगदान ग्वालियर केंद्र।

0: नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं साथियों कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम युववाणी में साथियों एक बार फिर आपकी दोस्त उमा आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, गर्मियों का आगाज हो चुका है। मई जून की इस भयंकर गर्मी में लोग अक्सर धूप और तेज गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजें खाना पीना पसंद करते हैं। खासकर इस मौसम में जब लोग ठंडा पानी पीना बेहद पसंद करते हैं, चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने की आदत हम में से कई लोगों की होती है। इसे पीने से हमें तुरंत राहत जरूर मिलती है, लेकिन ठंडे पानी पीने से मिलने वाली यह राहत कुछ पल की होती है। साथियों, आपको कुछ देर राहत देने वाला यह पानी आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। बहुत कम लोग यह ही जानते होंगे कि बर्फ वाला या चिल्ड वाटर पानी पीने से सेहत को कई गंभीर नुकसान पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ सकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। नियमित रूप से ठंडा पानी पीने से खाना पचाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप जरूरत से ज्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं तो इससे ब्रेन फ्रिज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल साथियों, ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी की सेंसिटिव नसों को ठंडा करता है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसकी वजह से सिरदर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। साथ हमारे शरीर में वेगस नर्व होती हैं, जो गर्दन के जरिए हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी ये नसें तेजी से ठंडी होने लगती हैं और हार्ट रेट को और पल्स रेट को धीमा कर देती हैं, जिससे इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है। चिल्ड वाटर से गले में खराश और कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से खासकर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा बलगम बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और सूजन संबंधी संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए साथियों, चिल्ड पानी ना पिए। मिट्टी के बर्तन का पानी आयुर्वेद के अनुसार हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों के पानी का उपयोग करें। इससे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ बिजली की खपत को भी कम कर सकते हैं। साथियों, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।
1: Tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum, tanak tum

साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बिजली की खपत को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इसके लिए आप नेचुरल लाइट का यूज करें, अपने घर की खिड़की और दरवाजों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि आप नेचुरल लाइट का उपयोग करेंगे तो आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। हल्के रंग के पर्दे खरीदें, उनसे कमरों में उजाला हो सकेगा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। साधारण बल्ब की जगह CFL और LED बल्ब का प्रयोग करने से काफी ऊर्जा बचाई जा सकती है। साधारण बल्ब अपने 98% कंज्यूम की गई ऊर्जा को गर्मी के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, जबकि CFL और LED बल्ब कई ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं और कई गुना ज्यादा समय तक चलते हैं। जरूरत ना होने पर स्विच ऑफ कर दें और यह बिजली बचाने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है।

और यह वास्तव में काम करता है। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि एक निश्चित समय पर आपके घर में कितनी बत्तियां हैं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आपको एक समय पर कितनी बत्तियों की आवश्यकता है। जब आप एक कमरे से बाहर जाएं, तब हर बार बत्ती बुझाने की आदत बनाएं। किसी भी ऐसी डिवाइस को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिन डिवाइस के प्लग सॉकेट में लगे होते हैं वे बंद होने के बावजूद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें। दरवाजा बार बार खोलने से फ्रिज के कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। एसी के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत करें। इससे नीचे टेम्परेचर पर बिजली की खपत पर असर तेजी से पड़ता है। कूलर पंखे में इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें और साथ ही ऑयलिंग, कंडेंसर, वायरिंग की सर्विसेज का ध्यान रखें। इस तरह साथियों, अपनी छोटी छोटी आदतों से आप बिजली के बिल को काफी हद तक कम कर पाएंगे।

साथियों, नौ तपा में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। इसका असर हमारे साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, वो भी ओवरहीट हो सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स या पावर बैंक जल्दी गर्म होते हैं। इससे बैटरी डैमेज, लो परफॉर्मेंस या अचानक डिवाइस बंद होने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। साथियों, कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फ़ोन में हीट बनती कैसे है? दरअसल साथियों, आपने एनर्जी का एक प्रिंसिपल पढ़ा या सुना होगा, E=mc². इसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ बदलती रहती है। हमारा फोन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फोन यूज होता है तो बैटरी में स्टोर एनर्जी हीट में बदलती रहती है और ये ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है। नौतपा में साथियों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में फोन गर्म होने पर ये हीट वातावरण में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसलिए फोन ज्यादा गर्म होता है। और ओवर हीटिंग से गैजेट्स को कई नुकसान होते हैं, जैसे बैटरी जल्दी खराब होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, प्रोसेसर या मदरबोर्ड खराब हो जाता है, फोन या मोबाइल लैपटॉप बंद हो सकते हैं, बैटरी फूलने या और डिवाइस डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, अचानक शटडाउन से डेटा लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं साथियों, ओवरहीट से स्क्रीन पर भी असर पड़ता है। इसलिए साथियों, गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फोन को डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने दें, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें और फोन ओवरनाइट चार्जिंग पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज करें। फोन हीट होने पर उसका कवर हटा दें। लैपटॉप को बेड तकिए पर रखकर तो बिल्कुल ना चलाएं। अनयूज्ड ऐप्स को बंद कर दें और साथियों, सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। साथियों, गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाकर आप उनकी सेल्फ लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।

होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ, तब तक सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आप युववाणी कार्यक्रम साथियों मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथियों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, अब अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। पेश कार्यक्रम संगीत सरिता।

अभी आप सुन रहे थे शाहिद कबीर का कलाम। स्वर था जगजीत सिंह और लता मंगेशकर का, एल्बम था सजता। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: परवेज मेहंदी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है संगीत सरिता और आइए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज़।

चंदन दास की आवाज़ अभी आपने सुनी, एल्बम था जज्बात। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं निदा फाजली का लिखा कलाम। संगीत है राजेंद्र मेहता का, आवाज़ है नीना मेहता की, एल्बम है हम सफ़र।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। पेश कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फारूक कैसर के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है बप्पी लहरी का, आवाज़ है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम लहू के दो रंग।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मजरूह का लिखा गीत। संगीत है आरडी बर्मन का, आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर के बोल। स्वर और संगीत शंकर महादेवन का है, एल्बम है ब्रेथलेस।

अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर के बोल। संगीत था शंकर महादेवन का, आवाज थी शंकर महादेवन की, एल्बम था ब्रेथलेस। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता और इस कार्यक्रम में सुनते हैं फैज अनवर का लिखा गीत, संगीत साजिद वाजिद का, आवाज सोनू निगम की, एल्बम दीवाना।

तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह सागर केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रोफेसर फिल्म के गीत के साथ, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। तलाश फिल्म का गीत सुनते हैं मजरूह का लिखा हुआ, संगीत है एस टी बर्मन का।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। बोल हैं SH बिहारी के, संगीत है OP नैयर का।

महेंद्र कपूर की आवाज़ अभी आपने सुनी। SH बिहारी के बोल थे, संगीत था ओपी नैयर का, फिल्म का नाम था किस्मत। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:45 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं केशव सुल्लेर की गाई इस ईश्वरी चौकड़िया के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लोकरंग कार्यक्रम में अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं आजाद सिंह यादव और साथियों के स्वर सुनते हैं ये हास्य गीत।

अभी आप सुन रहे थे, ये हास्य गीत कलाकार थे आजाद सिंह यादव। इस हास्य गीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है।

0: और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।
0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
3: यह आकाशवाणी सागर है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
5: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस इन दी सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
4: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
6: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
4: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का

आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 से। रात्रि 8:00 सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। विषय होगा मध्यम वर्ग कल्याण। संगीत श्रीता कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:35 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9:30 से। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11:00 से। इन्हें हम रिली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिली किए जाएंगे रात्रि 11:05 से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इसे हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00 से। इसे भी हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा सुबह 10:05 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं सुबह 11:00 से। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा, रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5:00 से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:02 से। ये दोनों ही कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रेडी करेंगे शाम 7:10 से। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 7:20 से। इस कार्यक्रम में कल का खास क्रम होगा हेलो किसान वाणी। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल बंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वी शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए

0: राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: हमारे गांव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह हैं 11 समूह हैं, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुककीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संजय सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा।
0: भोपाल की रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने GEE एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए ST PWD श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरा नाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में

एज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहे ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस चेतावनी गीत के साथ। कलाकार हैं शकुंतला कुशवाहा।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: लोकरंग कार्यक्रम के आखिर में अब आपको सुनवाते हैं, ये हास्य गीत कलाकार हैं सुरेश चंद्र तिवारी।

लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। कहीं भी हीट वेव नहीं बनी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश को अलर्ट जारी करो है। बुंदेली समाचार इतना ही संपन्न होते हैं। बुंदेली समाचार। भैया हरो रेडियो से चाहे मनोरंजन की बात हो या फिर देश विदेश की जानकारी या अपने ग्रामीण भाइयों के लिए समसामयिक जानकारी और बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसे वे अपने खेती किसानी को और अधिक उन्नत और अधिक पैदावार युक्त बना सकते हैं, तो जय विषय पे कुछ ऐसी वार्ता है आज लेके हम हाजिर भए हैं। ग्रामीण विकास में रेडियो को सामयिक योगदान और ई विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुन लेते हैं जब भेंट वार्ता ग्रामीण विकास में रेडियो का सामयिक योगदान।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, रेडियो आकाशवाणी को आप सभी लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी उम्र को देखें और सोचें कि आप इसको कब से सुन रहे हैं, रेडियो को कितने वर्षों से सुन रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे, बचपन से, पूरा जीवन हो गया रेडियो सुनते हुए। जी हाँ, क्योंकि रेडियो के प्रसारण को, आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यह गरिमा में जो सफर रहा है उसी पर हम बात करना चाहते हैं और आज का हमारा विषय है कृषि एवं ग्रामीण विकास में रेडियो का सम्यक योगदान। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेडियो के एक अच्छे ब्रॉडकास्टर कह सकते हैं, प्रसारणकर्ता भी कह सकते हैं, एक अच्छे सुधी श्रोता भी कहे जा सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप खरे, जो कि व्याख्याता हैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय नूतन कॉलेज भोपाल में। आप हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात हो रही है रेडियो के सफर की और रेडियो के 90 वर्षों का जो ये सफर है, इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष जो पूर्ण होने वाले हैं
0: जी,
1: उसमें आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को नमस्कार कर रहा हूं और सभी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहा हूं
0: जी।
1: मैं इस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को आकाशवाणी के साथ जुड़ करके और इस पर बात करने के लिए
0: जी।
1: उसकी खास बात ये है कि लगभग 55 साल से नियमित रूप से
0: जी
1: मैं रेडियो को सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है।
1: रेडियो ने जो ये यात्रा पूरी की है
0: जी,
1: आवाज के इस साल में शायद 8 जून 2026 को जो ये पूरे होने वाले हैं 90 वर्ष, मुझे लगता है कितनी बड़ी यात्रा होगी ये जो आज तक चल रही है, जिसके साथ हम लोगों ने अपना जीवन जिया है
0: जी,
1: जिसके साथ हम लोगों ने अपनी संस्कृति को देखा है।
0: क्या बात।
1: जिसके साथ हमने अपने

0: गांवों को देखा है और गांव की कितनी अच्छी संस्कृति होती है,
1: जी।
0: चाहे वो कृषि विकास को ले लें, चाहे ग्रामीण जीवन को ले लें, चाहे ग्रामीण संस्कृति को ले लें, एक अद्भुत आनंद पैदा करता है
1: जी।
0: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर हमको रेडियो के सुनने की जो हमारी क्षमता और क्षमता के साथ में उसकी जो चीजें कंटेंट हमको मिलती हैं, उसकी विषय वस्तु, वो हमको बिल्कुल गौरवान्वित कर देती है और हम गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने रेडियो और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे करने वाले हैं। मैं बहुत ही निश्चित रूप से आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आपके साथ इस बातचीत में शामिल होकर के।
1: वाकई 8 जून 1936 से शुरू हुआ यह सफर अब 90 वर्ष पूर्ण करने वाला है। मैं खरे साहब आपसे थोड़ा सा आपको बचपन में ले जाना चाहता हूं। जब आप छोटे रहे होंगे, क्या आपके कुछ संस्मरण है अभी जो रेडियो से जुड़े रहे हों बचपन में?
0: देखिए, बचपन की अगर आप बात करेंगे तो मेरा जीवन रेडियो को सुनने से ही शुरू हुआ है, आज से 55 वर्ष पहले। क्योंकि हमारे घर और परिवार में एक किसान परिवार का बेटा होने के कारण
1: जी,
0: खेती से जुड़े होने के कारण
1: जी,
0: गांव में रहने के कारण
1: जी,
0: हमको यही संस्कार मिला है कि हम केवल रेडियो को सुन सकते थे और रेडियो को हम एक मार्गदर्शक मानते थे, एक ऐसा बिंदु मानते थे कि जैसे ये हमारा मित्र है। हम बाहर तो खेलने बचपन में बच्चों के साथ जाते थे, लेकिन घर में आने के बाद रात तक रेडियो का ही श्रवण करते रहते थे
1: जी जी।
0: तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि हम अपनी घड़ी का जो मिलान करते थे वो रेडियो से करते थे।
1: वाह।
0: किसी से पूछ करके नहीं करते थे। अगर किसी ने कोई दूसरा टाइम बता दिया हमको तो उस पर भरोसा जल्दी नहीं होता था और हम उसको ये बोलते थे कि मेरी घड़ी भैया रेडियो से मिली हुई है। तो वो व्यक्ति भी रेडियो से अपनी घड़ी को मिलाता था, यानी कि इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा मार्गदर्शक जो हमको जीना सिखाता है
1: जी,
0: जो हमारे समय को पाबंद करता है, जो हमें अपनी सुइयों में बांध के रखता है, उसको हम जैसे ही डायल करते थे तो बहुत सारे आकाशवाणी के चैनल हमको ये बताते थे कि आज ये कार्यक्रम आने वाला है, ये कार्यक्रम आने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक कागज और पेन लेकर के उस कार्यक्रमों को नोट कर लेता था।
1: वाह।
0: इसलिए नोट करता था कि इतने बजे आकाशवाणी से ये कार्यक्रम आएगा और इस कार्यक्रम को सुनना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि गांव से जुड़े होने के कारण कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बड़ी धैर्य और बड़े प्रेम से सुनते थे
1: आप,
0: क्योंकि हमें मालूम तो हो कि आखिर कृषि की उन्नति किस तरह से हो रही है। क्योंकि सच में अगर आप देखें तो हमारा देश गांव में बसता है, हमारी संस्कृति गांवों की है। जितने शहर ये बने हुए हैं ये गांव के टुकड़े होकर के, टुकड़े ना कहें तो गांव की संस्कृति ही शहरों में पहुंची है और फिर कहीं ना कहीं वो प्रदूषित होकर के महानगरों का रूप ले लिया है।
1: रेडियो ने जो ये पूरे सफर तय किया है इतना लंबा, इसमें ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें, कृषि के विकास की अगर हम बात करें, तो आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से रेडियो का योगदान रहा होगा कृषि विकास में और गांव के विकास में?
0: वाह, कितना बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और ग्रामीण भारत तक जानकारी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कुछ रहा है तो वो रेडियो ही रहा है। रेडियो ने आखिर क्या किया ये देखने की जरूरत है। खेती की नई तकनीक अगर कहीं हमें प्राप्त हुई है तो रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से और उसके प्रसारण के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। मौसम की जानकारी, कब बारिश होने वाली है, कब ओलावृष्टि होने वाली है, अगर इस जानकारी की अगर आप बात करेंगे तो इतना सशक्त माध्यम है ये रेडियो आकाशवाणी के प्रसारण कि कल बारिश होने वाली है, खेत में किसान को जाना है या नहीं, उसको कौन से बीज को बोना है और कौन कौन से काम उस समयबद्ध तरीके से करना है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें रेडियो का ही सहारा लेना होता था।
1: बिल्कुल सच।
0: और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो डिजिटल युग आ गया है
1: जी,
0: लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जैसे श्रोता हैं
1: जी जी,
0: जो रेडियो को आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं
1: जी।
0: अपनी घड़ी के मिलान से लेके उन्नत कृषि के तरीकों को लेकर के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी, इतना ही नहीं कौन से बीज, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की जानकारी वो रेडियो के माध्यम से ही मिल रही है हमको
1: जी।
0: तो ये जो सारी जानकारी है ये किसानों तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची है और आज भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि पहुंच रही है। इससे हुआ क्या, ये जानकारी तो पहुंच गई
1: जी,
0: लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और कृषि के प्रति, ग्रामीण विकास के प्रति जनमानस में एक जागरूकता भी पैदा हुई।
1: बिल्कुल सच बात है। और मुझे याद आ रहा है सर कि मैं जब बच

0: बचपन से रेडियो मैं भी सुनता आया हूं और मैं अपना खुद का अनुभव बीच में साझा करना चाहूंगा
1: जी जी
0: कि मैं बहुत छोटा था जब रेडियो चलता था तो मुझे लगता था इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं और ऐसा लगता था कि हमारे ही परिवेश के लोग वहां बैठ करके बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और वो जब जिज्ञासा मन में होती थी तो लगता है कि रेडियो वाकई अंतस में जाकर के बस जाता है और फिर रेडियो जब चलता है जीवन में तो आगे बढ़ाता ले जाता है। पहले रोजगार समाचार, रेल सूचनाएं भी पहले रेडियो से जाया करती थी, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो जरिया होता था सूचना प्राप्त करने का, समाचार प्राप्त करने का। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। आपकी मन में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज भी आपके मन में छाप है, जिनकी लगता है कि वो कार्यक्रम आज भी हमारे लिए यादगार हैं?
1: देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न मुझे पूछा है और इससे मुझे, आपके पूछने से मुझे याद आ रहा है कि लगभग मैं शायद 5 या 6 वर्ष का रहा हूँगा
0: जी,
1: तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ।
0: जी जी,
1: इतना प्रभावी माध्यम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में जो हम पहुंचे हैं ना, वो रेडियो के माध्यम से ही पहुंचे हैं। अगर शायद रेडियो नहीं होता तो हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों में इतनी बड़ी खोज आज तक नहीं पहुंच पाती। खैर, दूसरा प्रश्न आपका इसी के साथ में, और कुछ भी पूछा आपने शायद,
0: कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है रेडियो?
1: हाँ देखिए, मैं तो बढ़िया बात है, मुझे अवसर मिला कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ और मैं रोमांचित भी हो रहा हूँ
0: जी जी
1: रेडियो और आकाशवाणी की बात से, क्योंकि इसको मैं 55 साल से आपको पहले ही बताया सुन रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, खास तौर से कृषि दर्शन का कार्यक्रम आता था
0: जी,
1: चौपाल का कार्यक्रम आता था हमारे घर के बाहर, चौपाल में बैठ करके बहुत सारे गांव के लोग बैठते थे
0: जी,
1: और रेडियो बीच में उनके बैठा रहता था। तो हम ऐसी कल्पना में हम लोग करते थे, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त के, ऐसी कल्पना करते थे कि जैसे रेडियो एक व्यक्ति के रूप में वहां उपस्थित है और वो जो बोल रहा है उसको हम लोग सुन रहे हैं।
0: वाह वाह।
1: और उस वो एक आदर्श के रूप में रहता था और उसकी बात को हम मान भी रहे हैं। तो कृषि दर्शन का कार्यक्रम, चौपाल का कार्यक्रम, और मुझे याद आ रहा है कि किसानवाड़ी का कार्यक्रम, मौसम बुलेटिन, सरकारी योजनाओं से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो भी हमारा सुनना बंद नहीं हुआ। तो रोजगार के बहुत सारे अवसर आते थे तो उसी के माध्यम से मालूम होते थे, और जब रेडियो से ये मालूम हो जाता था कि रोजगार की ये जगह आई हुई है, तब उससे संबंधित हम रोजगार समाचार या उस समय जो भी इस तरह के बुलेटिन उपलब्ध हुआ करते थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उनको खरीद करके हम लोग आवेदन किया करते थे। तो रेडियो की बड़ी सशक्त और इस तरह की ये भूमिका रही है प्रारंभ से ही।
0: वाकई खरे साहब, जैसा आपने कहा ना कि रेडियो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, और लक्ष्य रेडियो का यही है कि महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, इवन किसान हो, सभी के लिए इसमें बहुरंगी कार्यक्रम होते हैं और सबको ज्ञान देना, सबके लिए रास्ता देना, सबके लिए एक सलाह देना, एक अच्छी अच्छी जानकारियां उन तक पहुंचाना रेडियो का काम है। अब डिजिटल युग आ चुका है, आज बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति में रेडियो की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, आज का युग डिजिटल युग है
0: जी,
1: हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सारे अब डिजिटल युग के साथ में समाविष्ट हो गए हैं
0: जी।
1: लेकिन इससे आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि रेडियो की महत्ता कम हुई है। रेडियो की स्थिति आज भी वही है, आज भी वही श्रोता हैं, 55, 60, 70 साल पुराने श्रोता आज भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं। डिजिटल युग में वो नहीं जी रहे हैं, उनके बच्चों के माध्यम से वो डिजिटल युग को जानते जरूर हैं
0: जी जी।
1: मोबाइल फोन, एफएम रेडियो के माध्यम से किसान तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसका लाभ हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास में कमी कहीं नहीं आई है, उनकी सूचनाओं में कहीं कमी नहीं आई है, क्योंकि एफएम रेडियो भी और मोबाइल फोन भी वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी खास बात और देखिए, आपकी आपदा या खराब नेटवर्क की वजह से रेडियो एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है आज के समय में।
0: बिल्कुल सच बात। और सर, एक बात और भी मैं आपको बीच में कहना चाहूंगा कि आज का डिजिटल युग आया है तो रेडियो भी अब डिजिटल युग में जा चुका है। हमारा न्यूज ऑन एआर एक ऐप है जिसके माध्यम से आप मोबाइल में उसको ऐप को डाउनलोड करके
1: जी जी।
0: पूरे देश के कार्यक्रमों को आप एक ही मोबाइल में एक साथ ट्यून करके सुन सकते हैं। हमारे युवा साथी, हमारे जितने भी रेडियो के श्रोता हैं, वे इस नए युग में, नए तरीके से, नए परिवेश में रेडियो को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं सर आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप तो रेडियो में कंपेयर रहे हैं, सूत्रधार की भूमिका आपने निभाई है और आपके परिवार से भी

0: रेडियो से जुड़े हुए लोग रहे हैं, क्योंकि आप श्रोता अकेले नहीं हैं, आप वक्ता भी हैं रेडियो पर, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी जी जी, आपने फिर मुझे वही पुरानी बातें याद दिला दी। बहुत मैं छात्र जीवन में था जब रेडियो से मुझे प्रेम हुआ था।
0: और पहला प्रेम आपका रेडियो है?
1: निश्चित रूप से रेडियो ही है, बिल्कुल। रेडियो से प्रेम होने के कारण ही मेरी बड़ी आकांक्षा होती थी कि मैं रेडियो में बोलूं, आकाशवाणी के माध्यम से मेरी आवाज दूसरे तक पहुंचे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जबलपुर आकाशवाणी से युवाणी कार्यक्रम में, कृषि दर्शन कार्यक्रम में और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने कंपेयरिंग का काम किया। तो ये मान के चलिए कि रेडियो की जो भूमिका है युवाओं के लिए तो है ही, युवाओं की आपने बात की, महिलाओं के विकास के लिए भी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: जी जी,
1: रेडियो ने महिलाओं को क्या दिया? स्वास्थ्य की जानकारी दी, पोषण की जानकारी दी, खान पान की जानकारी दी, स्वरोजगार और शिक्षा संबंधी जानकारी प्रारंभिक रूप से रेडियो से ही प्राप्त हुई। तो युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, जो आजकल पूरे देश में कौशल विकास की बात चल रही है, ये काम रेडियो में शुरू हो चुका था। आकाशवाणी के माध्यम से कौशल का कैसे विकास किया जाए, इस तरह के कार्यक्रम आया करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कौशल विकास के कार्यक्रम, आधुनिक कृषि तकनीकों के कार्यक्रम, ये सब इनका जो सूत्रपात है वो रेडियो के माध्यम से ही जनमानस तक संस्कारित होकर के पहुंचा है।
0: बिल्कुल, अब बात कहीं अधूरी रह गई बीच में। मैंने शायद सुना था कि आपके परिवार में कुछ और लोग भी हैं जो रेडियो से जुड़े रहे हैं, आप शायद किनारा कर लिए उस बात को। मैं चाहता हूं वो भी हमारे श्रोता सुने।
1: जी जी जी जी जी, शायद मुझे उल्लेख करना ही पड़ेगा, आपने बताया तो। बहुत सालों तक आकाशवाणी भोपाल जी, आकाशवाणी सागर जी, मेरी पत्नी ग्राम सभा में बहुत वर्षों तक कंपेयर रही
0: जी,
1: ग्राम सभा के अनेक कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किए।
0: मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोताओं को भी बता दूं कि 98 में उनका यहाँ उस समय ग्राम सभा में एज ए कंपेयर के रूप में वे रही हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम उनके साथ ग्राम सभा में दिए हैं, और बहुत वाकई बहुत अच्छा उनके साथ का वो रहा है काम करने का अनुभव मेरा। जिस तरीके से रेडियो आगे बढ़ रहा है और इतना लंबा सफर रेडियो ने सफलतापूर्वक तय किया है, हमारे श्रोताओं के लिए आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता कि जहां आज भी विकास के मार्ग नहीं खुल पाए हैं, रेडियो ने उनको संस्कारित और विकसित किया है। वो रेडियो की आवाज ही उनको संस्कार भी दे रही है और उनका मनोरंजन भी कर रही है। जो लोग संस्कारित हो चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, जो महानगरों में हैं और गांव में हैं, वो तो अब रेडियो के ऊपर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि अब डिजिटल युग आ गया है।
0: सच बात।
1: लेकिन रेडियो की अस्मिता, रेडियो के अस्तित्व को वो लोग नकार नहीं सकते हैं। और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है, या शायद अभी भी हो, क्योंकि मैं तकनीक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ गांव में रहने के कारण और वहाँ पर ग्राम में जीवन में संस्कारित होने के कारण, कि शायद भविष्य में या आज भी रेडियो डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और इंटरनेट रेडियो के साथ और अधिक प्रभावी रेडियो बनता चला जा रहा है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि बन गया है। अब आप देखिए कि स्थानीय भाषाओं में, जिस प्रदेश में जाएं वहां की अपनी एक स्थानीय भाषा है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो स्थानीय भाषाओं में भी कृषि आधारित कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने सुधी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि रेडियो में जो जानकारी मिल रही है वो सच्ची जानकारी है, सही जानकारी है, बहुत शोधपरक जानकारी है, उसको आप प्रामाणिक तौर पर स्वीकार कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे जी, आपने हमसे बहुत अच्छी और लंबी बातचीत की है, बहुत सारगर्भित बातचीत की है, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

जरूर वे लाभान्वित हुई हुई हैं और उन्हें भी अपने दिन याद आ गए हुई हैं कि कैसे उनने अपने बचपन की शुरुआत रेडियो के माध्यम से करी थी। और आज 90 वर्ष होवे पे भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ बदलावों के साथ हमारे रेडियो में वही एक चमक बनी हुई है। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे और उनसे बातचीत करी थी मनोज सक्सेना भैया ने। और अब सुन लेते हैं गिरजा भाई को गाओ भाओ एक कृष्ण भजन।

भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखवे के लाने हमें जरूरी होते हैं कि हम सतत फसल उत्पादन लेते रहें। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनने प्रकृति से जो जीवाणु अपन को मिल रहे हैं उनको पहचान के उनसे विभिन्न प्रकार की पर्यावरण के लाने जो उपयोगी उर्वरक हैं उनको तैयार करके रखो है, जिन्हें हम जैव उर्वरक या जीवाणु खाद कहते हैं। जैव उर्वरक के इस्तेमाल करवे से वायुमंडल में जितने भी उपस्थित नाइट्रोजन हैं पौधों को सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। भूमि में उपलब्ध फास्फोरस घुलनशील रूप में भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे माटी और उपजाऊ बन जाते हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में हैं, विकल्प के रूप में इनको हम नहीं मान सकते हैं। जैव उर्वरकों में जीवित सूक्ष्म जीव

केले में कवक और शैवाल के रूप में पाए जाते हैं। ये पेड़ों की जड़ों या मिट्टी में पहुँच के प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व की संख्या को बढ़ाते हैं और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर भी रखते हैं, फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। जई काजे ये हमारे सबके लाने बहुत उपयोगी माने जाते हैं और इनके उपयोग में सबसे बड़ी बात करें कि जैव उर्वरक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे राइजोबियम होते हैं जो दलहनी फसलों में गांठें बनाते हैं, एजोटो बैटर होते हैं जो गेहूं मक्का कपास के लाजे नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु के रूप में होते हैं, ये मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील के रूप में पौधों लोग उपलब्ध कराते हैं, नील हरित शैवाल के रूप में होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो बात है वो इनमें बहुत सारे लाभ छुपे भए हैं। सबसे बड़ी बात है ये लागत में कम होते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, कैसे ये प्राकृतिक जीवाणुओं से बनाते हैं, इनमें जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो पर्यावरण संरक्षण के करीब हैं। रासायनिक उर्वरकों की तरह इनमें पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने की क्षमता नहीं होते बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वह है उत्पादन में जे वृद्धि कराते हैं। जब इतनी अच्छी इनमें बात है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों को प्रयोग करें और अपनी जो है फसल को और उपजाऊ बना के रख लें। और अब सुन लेते हैं गणपत सिंह यादव और साथियों के स्वर में जो लोकगीत।

हाँ कल के कार्यक्रम सोई बताओ चल रहे हैं। कल भुनसरा सुन रहे हैं, कृषि चर्चा 6:45 पे, मृदा सौरीकरण को महत्व और वाचक सरोही है आराधना कुमारी को और संजय चुन रहे हैं। भेंट वार्ता गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य रहवे केलाने आयुर्वेद की सलाह है, वाचक सरोही है ऋतु पांडे से पूनम सरावगी की बातचीत और आरती बहन खोदेव आज्ञा। राम राम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
3: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
3: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
4: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
3: Absolutely. Mr. Tandon.
5: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
3: जी,
5: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात

0: करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because aap poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupay roz ka. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स, सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities.
2: Absolutely.
1: Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है, तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
0: मैं आपकी बात

आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश

0: करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी।
0: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं
1: शरद जी। मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं
1: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
1: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
1: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself, you create jobs for so many people around you. And you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that there are so many although I treat homemakers as
1: they
2: a very, very active GDP.
1: In
2: fact,
1: actually,
2: we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right.
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30% and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system
1: yep.
2: and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati hai, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced लिमिटेड, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो

0: पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है। सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है, दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है, ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ।
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव, आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है। और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है।
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया,
2: काम किया है,
1: हमें दिख
2: उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
0: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है।
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi, akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort में पहुंच रहे, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
1: And you know that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it you know airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे

0: हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
1: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन segment of the middle class that I think we have to talk about and we should mention is the women. Women, you know, are the backbone of any middle class family. What in your opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
1: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har varg ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो।

0: मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया. एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम. द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम, दैट इज इंक्रीजिंग. एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स. आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड, दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं. और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं. ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है. और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था. पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं.
1: बिल्कुल.
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है. महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है. और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है. सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है. और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं. ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है.
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा. बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट. अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है. तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं. पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं. तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है. और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा.
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है.
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है. मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास. तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए. द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग. इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app.

0: App News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण। हम आकाशवाणी

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:46 और 24 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बेताब लखनवी का लिखा कलाम, स्वर और संगीत अनूप चलूटा का।

0: बेताब लखनवी का कलाम अभी आपने सुना, स्वर और संगीत था अनूप चलूटा का। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी।

और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। तमाम सुनने वालों को सुमित दुबे का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलजार के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है राहुल देव बर्मन का, आवाज़ है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है गोलमाल। फरमाइश है आप सभी की, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी की ये फरमाइश है। ग्राम बाघा मुड़ा कुमा खान छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। शनि मंदिर चौक खंडवा से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी की। ग्राम हिंगड़ी से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं गोलमाल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज़ में टूटे खिलौने फिल्म का गीत। बोल हैं कैफी आज़मी के, संगीत है बप्पी लहरी का। फरमाइश है आप सभी की। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की। ग्राम चौलहदा बागपत से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया की। आदर्श नगर मलुट पंजाब से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं टूटे खिलौने फिल्म का गीत यशुदास की आवाज़ में।

इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अनजान का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज है आशा भोसले की, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। फरमाइश है आप सभी की। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से ये व्हाट्सएप फरमाइश है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, सरिता। बिहारीपुरम खंडवा से ये व्हाट्सएप

से फरमाइश में मिली महेंद्र यादव, वीना यादव, गुड़िया और अजीता यादव की। वीरम गाम सिटी से कृष्णा देवी पाटिल, बुलंदशहर से संगीत कुमार और वाणी कुमारी, बिहारी बिहार भवन दिल्ली से सुमन यादव और सिमरन यादव की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आशा जी के आवाज़ में।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। नेपाल पहले सागर से ये पत्र में मिला, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, यहीं से शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, सक्सेना, रामदास, रमाकांत दुबे, रमेश कठौंदिया, प्रमोद सैनी, सुजीत भाई और उनके तमाम साथियों का ये पत्र है। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली ईश्वरवारा से सतीश, आशी खरे, राशि, पूजा, पिंटू, मुन्ना भाई, प्रियांशी, शिवांशी, कान्हा, अयांश, आरोही, प्रशांत, प्रीतेश और उनके तमाम साथी। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार की। सनावत मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख की ये व्हाट्सएप फरमाइश है। और जवाहर नगर दुर्ग से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम निशान, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार और साथियों की, बोल गुलशन बावरा के, संगीत राजेश रोशन का।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 होने को है, थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तब तक सुनते रहिए ये गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राजेंद्र भर्जी।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू ही ये फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। राम जी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म 3 भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनके जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव ला

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो ज़ौक साहब फरमाते हैं, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

0: काली जुल्फे उड़ते बादल गोरा चांद सा चेहरा।
1: तेरा जलवा तौबा है

फूलों से, फूलों से महफिल सजी है, हाय तेरा जन्मदिन आ।

0: किसका सलाम लिखा है।
1: तेरा महबूब बनेगा कोई किस्मत वाला। तेरा जलवा तौबा है, तेरा जलवा जब से देखा था।

आज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार

समझे।

जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल। जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।